0: या टुबो देमो
1: ओ देमो
0: या चो तेरंग ले सना आशिक दले लवा से तिन जा गलंग बी फा खी लोरी ड ग्लोरी से गुनु ग मान द सजा कर दीन
1: ओ दे छो गोंदम बा ता छतोवा फमो रोमा ता छमे रोमा ता छेरंग रोमा ता लमन जाबा में छ रोमा फव रोमा ला सुपायंग ला लक्ष्य से कोई
0: यारे
1: ऑल इन से जिमे ना दाग Tā lāma kāyān zāmbā gā, jī arrestīgā, māyā gāstāṁ.

ये यू है मिसुई यंग सान मन सका ये रुग रंग रंग सुई यंग रंग थन यन सका ये ची कल वासुई यंग तोंग अब जी जी मी ये सका तक सुई यंग रंग रंग जर जी मी ताली मोल मसुई यंग यो नंद मुरी जी